नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन कार्यक्रम पुष्पाञ्जलिमा। म प्रस्तोता युवेन्द्र। अबको करिब करिब एक घण्टा म यहाँसँग आज मंगलबार गणपति गणाधिपति श्री गणेशजीका भजनका साथसाथै सुमधुर भजन लिएर

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदीका हरेक प्रकारका सामग्रीका लागि प्रसिद्ध सिल्भर स्टेट धर्मपद

कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा।

सुस्र समझदारी को सेतु एफएम अध्यात्म ज्योति सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिप बाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामान को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एक मात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

0: अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम सर्वमङ्गलम्। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
1: जयश्री फुड्स प्राविधिकद्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन।

नमस्कार आदरणीय श्रोता, जय श्री फुड्स प्रालीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सर्वमङ्गलममा म सभ्यता तिवारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।

0: इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्राली का उत्कृष्ट उत्पादन
0: आदरणीय श्रोता यहाँ अहिले जयश्री फूड्स प्राली को प्रायोजन में रहेको कार्यक्रम सर्वमंगलम मा श्री महावीर हनुमान जी का केही भजनहरू सुन्दै

0: कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्राली का उत्कृष्ट उत्पादन
0: व्यावसायिक सन्देश पछि आदरणीय श्रोता कार्यक्रम सर्वमंगलम मा पुनः स्वागत छ यहाँलाई। जयश्री फूड्स प्राली द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम सर्वमंगलम मा यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ श्री महावीर हनुमान जी का केही भजनहरू।

0: कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जय श्री फूड्स प्राली का उत्कृष्ट उत्पादन।
0: कार्यक्रम सर्वमंगलम यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग
2: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनी सूट
5: वाओ
6: अनि मलाई

0: flashback.
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: कमाल है शराब का सुरूर नहीं, होना था सो हो गया, किसी का भी कसूर नहीं, सांसों में मेरे रस गई।
1: एक कुड़ी फंस गई।
2: ओफो, ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
1: अरे रफ,

जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार।

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ पंच

लाइफ मिजरेबल थी उनकी लाइफ, ड्रंकड हस्बैंड फाइटर वाइफ, बीवी बिगड़े शौहर अकड़े, रोज के झगड़े रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े,

पी के आया दरवाजे पे चिल्लाया उस दिन बीवी बन गई भोली कुंडी खोली हंस के बोली जाने तमन्ना अंदर आओ पहले तो कुछ खाओ आओ फिर बिस्तर पे होंगी बातें बड़े प्यार से कटेंगी रातें शौहर चौंका भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा शौहर बिस्तर छोड़ के भागा कुंडी ताला तोड़ के भागा भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा बोला देवी माफ कीजिए मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी उस दिन बीवी होश में आई बंद हो गई सारी लड़ाई नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई आई रे आई रे आई रे आई रे आई पीना छूट गया पीना छूट गया बीवी ने इतना दिया प्यार पीना छूट गया फिर दोनों ऐसे मिले हे हे फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार चाह चारिया

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़ जब पेट गड़बड़ सब तिर हड़बड़।
2: कब्जियत ग्यास अपच यी समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिनभर को जीवनलाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन। अन्तत मैले रोजे एसआर लैक्स 16 प्राकृतिक तत्वों को संयोजन ले बने को यो लैक्सेटिव ग्रैनुल्स ले अब मेरो पेटलाई सहज बनाएको छ। बिहान को शुरुआत हल्का महसूस संग हुन्छ र दिन खुशी र शान्तिपूर्ण। एसआर लैक्स प्राकृतिक र भरपर्दो समाधान कब्जियत ग्यास अपच र अम्ल पित्त को लागि। मेक योर डे हैप्पी एंड जॉयफुल पेट स्वस्थ जीवन सरल। एसआर लैक्स नजिकको फार्मेसी वा आयुर्वेदिक स्टोरमा उपलब्ध छ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: ರಸಾವೇಲ್ ಸುಚ್ಚೆ ಪಾಠ
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: का हर एक प्रकार का सामग्री लगायत गिफ्ट आइटम का लागि
1: सिल्वर स्टेट एउटै छाना मुनि चाँदी का सब सामान
0: सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ शाखा शुक्रपथ विशाल बजार को अगाडि फोन नंबर 4227345423535।
2: इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, यहाँको विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू: निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशैभरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबिबिएस कारोबार सुविधा, सी आसबा सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार गुर्जीको चौक काठमाडौँ।
3: टुगेदर वी डेलिभर।

मस्ती एंड डांस बेस्ट ऑफ नॉन स्टॉप हिंदी रिमिक्स ओनली ऑन FM AJ 104.8 MHz।

0: ओल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: बोली क्या तो फिल्म हेरदा खेरी
1: क्या दे?
0: बोली मानो ना
2: मिति गंगबुदी मंगसी

0: एक्सपीरियंस। सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। बहनों और भाइयों, याद तो आपको अभी आने वाली है हिंदुस्तान के एक बड़े खास और महान गायक की। तो बस उस साल के गीत नंबर 24 की सुनिए झलक और देखिए कि फिल्म 10 नंबरी के उस गीत में लता जी के साथ कौन गा रहे थे।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है।
2: अच्छा।
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
2: बाप रे,

जटाधार के नाम बाली के एक रस्सी लेना, जटाधार के नाम बाली के एक रस्सी लेना, और गले में फंदा डाल के हर दुख से छुट्टी लेना।

अभी जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना, अरे अभी जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना, प्यास से फिर संसार प्राणी बनने बस जाना, यदि फिर भी तू

एक ऐसा गीत जिसे ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली मगर गीतमाला की छाव ने इसे फिर जोरों में जिंदा कर दिया है। फिल्म का नाम था बॉम्बे बाय नाइट।

अब आप गीतमाला की छाओं के हरजाइयों को छोड़कर लौट आइए सन 1976 की गीतमाला की संगीत सीढ़ी पर। उस साल पायदान नंबर 23 पर जो गीत था ना, वो 75 में भी बज चुका था नंबर 29 पर। प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म थी वो।

वारंट की तरह गीत नंबर 22 पर भी देव आनंद ही की अदाकारी से सजी हुई फिल्म का गीत था। नाम वही जो उस जमाने की लड़कियां देव आनंद को भी पुकारा करती थीं, यानी जाने

बहनों और भाइयों, पता नहीं आपके दिल में तूफान उठते हैं या नहीं इन पुराने शानदार हिट गीतों को सुनकर। मैं तो भाई एक हिस्सा था उस जमाने का। वो सारे सितारे मेरे दोस्त हुआ करते थे। उन सारे गीतकारों, संगीतकारों, प्लेबैक सिंगरों से मेरा करीब का रिश्ता था। मगर हाँ, उस साल के गीत नंबर 21 के जबरदस्त गायक यशुदास को मैं पहली बार तभी मिल पाया जब इस फिल्म के बेमिसाल संगीतकार सलिल चौधरी के इंतकाल पर सितंबर 1995 में सलिलदा की याद में एक विशाल कंडोलेंस मीटिंग रखी गई थी कोलकाता में। और मुझे पहली बार पता चला कि यशुदास साहब इंसान भी उतने ही सुरीले हैं जितनी उनकी आवाज़ सुरीली है। सुनिए उनका गाया हुआ फिल्म छोटी सी बात का एक गीत जो उस साल आशा भोंसले के साथ पायदान नंबर 21 पर गूंजा था।

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में,
1: गीत वाला की 1976 की एन्यूअल हिट परेड में थोड़ी सी ब्रेक लग जाती है बहनों भाइयों, क्योंकि उस साल के टॉप हिट गीतों में भी नंबर 20 पर था गरम धर्म का वो गीत जो उन्होंने हसीन तांगे वाली हेमा के लिए गाया था फिल्म शोले में।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। तो साहब आइए, यहाँ इस समय हम एक ऐसे बड़े ही सुरीले गायक को याद कर लें। 1976 की पायदान नंबर 19 पर था उस कॉमेडी फिल्म का गीत जिसमें कहकहों के शहंशाह महमूद ने ऐलान किया था कि द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। वो गीत भी था उस फिल्म में, मगर वो सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंचा था। 19वें नंबर पर तो आया था उस फिल्म सबसे बड़ा रुपया का ये गीत।

भैया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। द होल थिंग इज दैट भैया सबसे

अमेरिका से आया ये हॉकी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन। आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे

साल का हिट गीत नंबर 18 था, फिल्म चलते चलते का वो गीत, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, मुझे अलविदा ना कहना। हाँ बहनों भाइयों, और ना कभी गीतमाला की यादों को या गीतमाला की छाओं की यादों को अलविदा कहना।

तो चलिए हम भी यहीं याद कर लेते हैं मोहम्मद रफी साहब का एक झूमता हुआ गीत जो उस साल हाय छांव ही में रह गया था, मगर कोई बात नहीं, इसीलिए तो आज यहाँ पूरा पूरा बजेगा। फिल्म थी दो खिलाड़ी और संगीत निर्देशन था उस हसीन जहीन लड़की का जिसने फिल्मों में संगीत देना अपनी जवानी में ही शुरू कर दिया था, मगर कई कई वर्षों के बाद भी उसकी धुनों का कमाल जो है वो कम नहीं हुआ। उसका नाम आप बताएंगे? या उषा खन्ना।

0: क्यों हमें रातों को जगाया।
1: और अब 1976 की छांव से चुनकर मैं एक और आवाज ले आया हूँ आपके लिए जो आजकल सुनाई नहीं देती, वो हसीन गायिका जो आज भी हमारे बीच हैं और गाने के अलावा कई फिल्मों में बड़ा खूबसूरत काम भी कर चुकी हैं। ये गीत जो अब आप सुनेंगे इसे भी इन्होंने ही गाया था और स्क्रीन पर हीरोइन भी यही थी फिल्म संकोच में। और अगर मैं ये बता दूं कि ये हैं मशहूर संगीतकार जतिन और ललित की बड़ी बहन जो काफी अरसे से कुछ कुछ बीमार रह रही हैं, तो आप फौरन बोल उठेंगे अरे सुलक्षणा।

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड पैलेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: पहले यहाँ सुंदर यूनुंता एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

वो एक प्रभु की नियमत है। रसकान जी कहते हैं, सोई है गवार जिन कीनो नहीं प्यार, नहीं सेव दरबार यार नंद के कुमार को, कि जिसने एक भगवान कृष्ण से, इस नंद नंदन से इस संसार में आके प्यार नहीं किया, उसने तो ये जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। और जिन्होंने ठाकुर जी से प्यार किया है, एक बार ठाकुर जी की झलक देखी है, उनके लिए फिर ये रातें ये दिन संसारियों की तरह नहीं बीते हैं। मीरा जी ने हर रात रो के बिताई है अपने प्रियतम की याद में। जो मैं जानती प्रीत की ये दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। इसी बात को कबीर जी ने दोहराया है, सुखिया सब संसार खावे और सोवे, दुखिया दास गरीब जागे और रोवे। जो अपने दिल को किसी के दिल के साथ जोड़ देते हैं, जो अपने मन अपनी इंद्रियों को श्याम सुंदर के साथ जोड़ देते हैं, वो फिर घर के या संसार के नहीं रहते। उनका जीवन गोविंद के अर्पण हो जाता है। दिल लगी क्या चीज है, दिल लगा के देख। दिल लगी क्या चीज है, दिल लगा के देख। कभी रो रो के और कभी मुस्कुरा के देख। परवाना जल रहा है मगर जल रहा है क्यों, ये राज जानना है तो खुद को जला के देख। प्रीत में जलने के बिना और ठाकुर जी को आरत भाव के पुकार के बिना ये जीवन में मंगल नहीं आने वाला। और गोपी पुकार पुकार के श्याम सुंदर

भवन में होने वाले घोर कोलाहल को सुनकर नंदीश्वर पता लगाने के लिए दौड़ पड़े और फिर लौटकर कहने लगे, हे प्रभु, हे चंद्रमौली, भवन में बड़ी विचित्र दुर्घटना घट गई। शिशु के दर्शनार्थ आए हुए शनि देव ने जो ही बालक के दर्शन किए त्यों ही उनका मस्तक छिन्न होकर उड़ गया। बेचारे शनिश्चर दीनहीन हुए सिर झुकाए वहीं खड़े हैं। नंदी देव की बात सुनकर सभी उपस्थित समाज शोकग्रस्त हो गया। भगवान शंकर तो इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें मूर्छा सी आ गई। गिरिराज हिमाचल, देवराज इंद्र एवं सभी देव ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि रोने लगे। परंतु भगवान श्री हरि ने तुरंत ही गरुड़ देव का स्मरण किया और कुछ ही देर में गरुड़ देव आ उपस्थित हुए। भगवान श्री हरि उस पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। भगवान श्री हरि द्वारा गजराज का मस्तक काटना। पुष्पभद्रा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराज अपनी सुघड़ काय हतिनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्री हरि उन्हें देखते ही गरुड़ से उतरे और सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट दिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि दशों दिशाएं कांप उठी। उस शब्द ने सभी को जगा दिया। हतिनी और उनके बच्चे गजराज की वह दशा देखकर चित्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्ताक्त मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हतिनी ने आकर गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण पर वाघवाणों का प्रहार करने लगी। उन्होंने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उनके शिर को कहां लिए जाते हो? मुझे सब वृतांत सत्य सत्य बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वरी, शांत हो जाओ, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि कोई अन्य जीव मारा जाता, किंतु विवशता यह थी कि मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था और जिस कार्य के लिए यह मारे गए हैं उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का ही विधान है। हतिनी ने उत्कंठा से पूछा, किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणी के मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि इसका कोई यथार्थ कारण ना बता सकोगे तो मैं तुम्हें शाप देकर ही नष्ट कर डालूंगी, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, माता पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से ग्रहेश्वर शनि देव उनके भवन में गए थे। उन्होंने जो ही बालक पर एक दृष्टि डाली कि उनका मस्तक छिन्न भिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसके फल स्वरूप जग जननी पुत्र वियोग के शोक में मूर्छित पड़ी हैं। हतिनी बोली, तो वह कौन सा न्याय है कि एक शिशु की प्राण रक्षा के लिए निर अपराध गजराज की ही हत्या कर दी गई? सिर उड़ाना था तो शनैश्चर का ही उड़ाते, क्योंकि वह सदैव ही लोक विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। भगवान विष्णु बोले, देवी, शनैश्चर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अमर और अजय हैं। उनका मारा जाना किसी प्रकार संभव ही नहीं था। फिर वह तो संसार के कल्याणार्थ सदैव गतिशील रहते हैं। बेचारे एक क्षण को भी तो कहीं विश्राम नहीं कर पाते। हतिनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर आप मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा ना करोगे तो मैं अब धर्म अधर्म कुछ भी ना देख कर आपको शाप दे दूंगी। भगवान ने कहा, देवी, किसी मरे हुए जीव को मैं कैसे जीवन दान दे सकता हूँ? तुम अपनी हट छोड़कर इसके बदले में मुझसे चाहे जो कुछ मांग लो वही दे दूंगा। हतिनी को इस तर्क में सत्यता ना लगी। उन्होंने कहा, देव, आपने ही उसे मारा है तो आप ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि आप किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो उसके प्राण लेने का ही आपको क्या अधिकार था? कहते हैं कि देवगण तो किसी का सिर काटने पर अन्य का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं,
मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सिर भी आप इसी कार्य के लिए ले जा रहे होंगे। श्री हरि बोले, तुम यथार्थ कहती हो देवी, वस्तुतः किसी के प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उसे पुनः जीवन प्रदान कर सके। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देहधारी के मस्तक की खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हतिनी ने हट किया तो मेरे पति का मस्तक ही इस धड़ पर लगा दो। पार्वती जी के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय ना करोगे। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, यह मस्तक तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव का मस्तक लगाने से मृतक की जीवन रक्षा हो सकती है। तुम धैर्य रखो, मैं अभी किसी जीव को लाकर इसे पुनर्जीवित करता हूँ। गजराज को पुनः जीवन दान देना। हतिनी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और कुछ ही दूर पर अन्य हाथी को देखकर उसका मस्तक काट लाए। वह मस्तक गजराज के धड़ पर जोड़ दिया और अनुग्रह पूर्वक जीवन दान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर सो लिए, अब निद्रा का समय निकल चुका है। गजराज ने आंखें खोलकर सोते से जागते हुए के समान देखा। भगवान को देखकर उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगे, प्रभु, आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। जिन भगवान श्री हरि के दर्शन करोड़ों जन्म तपस्या करने पर भी नहीं होते, उनका सौभाग्य मुझे सहज में ही प्राप्त हो गया। हे नाथ, आप चतुर्भुज, क्रीटधारी, शंख चक्र आदि से समन्वित, समस्त दिव्य आयुधों से सुसज्जित तथा गरुड़ पर आरूढ़ होकर गमन करने वाले हैं, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मेरा मस्तक छिन्न भिन्न किया, यह बड़े सौभाग्य की बात हुई। साक्षात आपके द्वारा मारा जाना तो निश्चय ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का कारण होता है, उससे निश्चय ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती। किंतु अब पुनर्जीवन होने से मैं उस दुर्लभ मोक्ष से वंचित ही रह जाऊंगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भक्तराज, तुम्हारा इच्छित अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, इन्हीं के अनुरोध से तुम्हें पुनर्जीवन की प्राप्ति हुई है। हतिनी ने भगवान की स्तुति की, प्रभु, उस शोक ग्रस्त अवस्था में मुझसे जो भूल बन गई हो उसे क्षमा करें। उस समय आवेश में आकर मैं आप परमेश्वर के प्रति अनेक दुर्वचन प्रयोग में ला बैठी थी। भगवान ने उन्हें भी मीठी वाणी से परितुष्ट किया और गरुड़ पर चढ़कर गजराज के कटे हुए मस्तक सहित कैलाश की ओर मन के वेग के समान चल दिए और शीघ्र ही जग जननी माता पार्वती जी के भव्य भवन में जा पहुंचे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।

सातवां अध्याय, शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ना। भगवान श्री हरि को हाथी के मस्तक सहित आते देखकर सब उपस्थित समुदाय ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब माता पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ कि शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ा जाएगा, तब वे अधिक व्याकुल होती हुई बोली, जनार्दन, आप मेरे पुत्र को निरा पशु ही बना देना चाहते हो, अवश्य ही इसके वध में आपका ही हाथ रहा होगा, क्योंकि आप किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। मेरे शिशु होने के समाचार से आपको यह भय हुआ होगा कि कहीं बड़ा होकर मेरी पदवी ना छीन ले, इसलिए शनैश्चर को साथ लेकर यहाँ आ गए। फिर हमें अनुग्रहिता बनाने की दृष्टि से हाथी का मस्तक ले आए, जिससे कि मेरा पुत्र पशु और महामूर्ख बना रहे। कहो, तुम्हारी चाल यही थी ना, जो प्रायः सफल हो गई। भगवान मुस्कुराए। तभी वहां खड़े हुए शनैश्चर ने कहा, माता, आपका अनुमान यथार्थ नहीं है। भगवान श्री हरि तो शिव सभा में बहुत पहले से ही विराजमान थे, उनसे मेरी भेंट भी कभी नहीं हुई। फिर यह तो जो कुछ भी करते हैं उसमें लोक हित ही निहित होता है, तब यह किसी भी आशंका पक्ष अथवा प्रमादवश भी ऐसा कर सकते थे? माता उमा बोली, तू भी मिथ्या कह रहा है शनैश्चर, जब तू नीचे दृष्टि किए रखने के कारण किसी की ओर देखता ही नहीं, तब तूने भगवान श्री हरि को वहां बैठे हुए किस प्रकार देख लिया? इससे यही प्रतीत होता है कि मेरे पुत्र की हत्या के षड्यंत्र में तुम भी सम्मिलित रहे हो, और तुमने जानबूझकर ही मेरे पुत्र को मार डाला है। शनि देव ने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, जगजननी, आप शंका मत करिए, चाहे मैं किसी और नहीं देखता, तो भी बोलचाल को सुनकर किसी को भी सरलता से पहचान सकता हूँ। आँखों से काम नहीं लेता तो क्या, मेरे कान ही समूचे दृश्य को मस्तिष्क तक पहुँचा देते हैं। फिर भी माता पार्वती जी को संतोष ना हुआ जानकर भगवान श्री हरि ने समझाते हुए कहा, देवी, मेरे बल प्राकर्म से अनभिज्ञ हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कह रही हो। यदि मैं आपके बालक की हत्या करना चाहता तो प्रथम तो उसे प्रकट ही ना होने देता, और प्रकट हो भी जाता तो सभी के सामने सुदर्शन चक्र द्वारा ही सिर कटवा लेता। विश्वास करो पार्वती देवी, ऐसा गर्हित कार्य कभी मैं नहीं कर सकता। फिर मेरा पद अक्षय है, उसका ना कभी नाश होता है, ना वह पराए हाथों में जा सकता है। मेरे ही समान ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी पद में जिनके अधिकारी निरंतर वही रहते हैं, कोई अन्य नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह तीनों ही परम शक्तिमान हैं, जिनका कार्य क्रमशः सर्गोत्पत्ति, पालन और प्रलय है। भला इन कार्यों को अन्य कोई करेगा भी तो कैसे? तुम्हारी अन्य आशंका यह है कि पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग गया तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, वह कुरूप और मूर्ख बन जाएगा, इसीलिए सभी उसका तिरस्कार करेंगे। तो आपकी शंका निर्मूल सी है, जब आपके पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग जाएगा तब तो वह अत्यंत दिव्य और भव्य प्रतीत होगा, उसकी सुंदरता अद्वितीय एवं दर्शनीय होगी, बस ऐसा लगेगा कि कभी यह रूप देखा ही नहीं। उसका रूप अत्यंत मनोहर रहने के साथ ही उसमें अद्भुत बुद्धि रहेगी। सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग एवं मनुष्य आदि में कोई भी इनके जैसा बुद्धिमान ना होगा। इसमें लोकोपकार करने की भी प्रबल शक्ति और सुमति होगी। जब लोग इनकी महिमा को समझ जावेगा तब इससे विद्या बुद्धि की याचना करेगा। यह अपने भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी भी होगा।
भगवान श्री हरि के तर्क संगत वचन सुनकर देवी पार्वती चुप हो गईं। उन्होंने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनका मन अभी शांत नहीं हुआ था। भगवान ने उनका उत्तर प्राप्त हुए बिना ही हाथी के मस्तक को शुद्ध जल से स्वच्छ करके शिशु के धड़ पर रख दिया। इसमें प्राणों का संचार हुआ और नेत्र खुल गए। गजमुख हुआ बालक चारों ओर आंखें चलाता हुआ देखने लगा। सभी उपस्थित नर नारी प्रसन्न होकर गजानन भगवान की जय बोलने लगे। श्री हरि द्वारा माता पार्वती को समझाना आदि वर्णन। मन से या बेमन से माता जी को भी हर्ष व्यक्त करना पड़ा। उनके स्तनों में दूध उतर आया तो वे गजमुख को गोद में लेकर स्तन पान कराने लगी। परंतु माता पार्वती के चित्त में उनके प्रति अधिक स्नेह जागृत ना हुआ जानकर भगवान श्री हरि उन्हें पुनः समझाने लगे। चतुरानन ब्रह्मा जी से कीट पर्यंत यह संपूर्ण विश्व अपने ही कर्मानुसार भोगों को प्राप्त होता है। हे शिवे, आप तो स्वयं ही इस जगत के लिए बुद्धि स्वरूपा हो, अतः आप किस तथ्य से अनभिज्ञ हैं, अर्थात सब कुछ जानती हैं। अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों को सैकड़ों कल्प पर्यंत भोग भोगना पड़ सकता है और इसी कारण शुभ अशुभ कर्मों के वशीभूत हुए प्राणी प्रत्येक योनि में भोगों को निरंतर प्राप्त करते रहते हैं। हे सती, यह कर्म फल का भोग ही है कि इंद्र को भी कभी कभी कीट योनि में जन्म लेना होता है तथा कभी कभी अत्यंत तपस्वी पुरुष भी अपने शुभ कर्मों के कारण इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। हे गिरिजे, प्राकृत कर्म के बिना सिंह किसी मक्खी को भी नहीं मार सकता। इसके विपरीत पूर्व जन्म के प्रथम कर्म के फल स्वरूप एक मच्छर भी हाथी को मार डालता है। कर्मों के फल से ही सुख दुख भय शोक एवं आनंद की प्राप्ति होती है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप सुख और हर्ष की तथा अशुभ कर्मों के वश स्वरूप दुख शोक आदि की प्राप्ति होती है। कर्मों के शुभ फल के उपार्जनार्थ भारत देश अत्यंत योग्य एवं पुण्य क्षेत्र है, अर्थात इस देश की भूमि पर कर्म करने का फल शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। गिरिराज नंदिनी, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के भी विधाता, काल के भी काल, निषेक के भी निषेक करता, कर्म फल के प्रदाता, संघारक के भी संघारक, पालन करता के भी पालक, पर से परे तथा गोलोक के स्वामी है। वही सबके नाथ एवं परिपूर्णतम ब्रह्म है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी जिस पुरुष की एक कला मात्र हैं, उसी का एक अंश यह महाविराट है। उस महाविराट के ही लोम छिद्रों में यह समस्त विश्व समाविष्ट रहता है। उसके कुछ कला अंश धर्म में विद्यमान हैं तथा कुछ कलाओं के भी विभिन्न अंश होकर यह संपूर्ण जगत बना है तथा बिना यज्ञ की स्थिति भी उसमें है। इसलिए देवी, तुम सृष्टि के इस रहस्य को समझने की चेष्टा करो। अपने चित्त में उत्पन्न हुए अशांति एवं तर्क वितर्क को त्याग कर अपने पुत्र को संभालो। देखो, वह अत्यंत प्रतापी एवं महिमावंत है। भगवान के उक्त वचन सुनकर माता पार्वती का चित्त कुछ स्वस्थ हुआ और तब उन्होंने श्री हरि की स्तुति की। प्रभु, आपकी माया बड़ी है, अद्भुत है, उसमें मैं तो क्या, शिवजी भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। यह मेरी कैसी मूर्खता थी कि आप तो मेरे पुत्र को जीवित करने के प्रयास में लगे थे और मैं मुंह पकड़कर आपके प्रति अपशब्द कह रही थी। हे जगन्नाथ, आप विशाल हृदय है, मुझे तुच्छ नारी के प्रति रोष को त्याग कर अनुग्रह कीजिए। आपने मेरे पुत्र को जीवित कर कर मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया है, उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। हे दीन बंधु, मुझ स्त्री को क्षमा कीजिए प्रभु। भगवान विष्णु बोले, देवी मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी यश वृद्धि हो और शिशु अमृतत्व की प्राप्ति करे।
यह सभी देवताओं में अत्यंत आदरणीय है और सदैव प्रथम स्मरण के योग्य रहे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।

0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: FM अध्यात्म ज्योतिका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न अथवा यहाँको सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नम्बर 9841289820 मोबाइल नम्बर 9841289820 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
3: तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको छ FM अध्यात्म ज्योति।
4: आठवां अध्याय, आभूषण स्वरूप शिशु को शक्ति प्रदान करना। तदुपरांत भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण की हुई कौस्तुभ मणि बालक के गले में पहना दी। फिर ब्रह्मा जी ने उसे अपना मुकुट पहनाया और धर्मराज ने रत्नों का एक दिव्य अलंकार धारण कराया। इसी प्रकार समस्त उपस्थित देवी देवताओं ने अपने अपने आभूषण आभरण अलंकार आदि प्रदान किए। तब सब प्रकार से संतुष्ट हुए शिवजी ने बालक का स्तवन किया। बोले, गजानन, आपके यहाँ आने से मैं धन्य हो गया। नर देह पर गज का मुख कैसा शोभायमान प्रतीत होता है, जिसका वर्णन भी इस वाणी से नहीं हो सकता। इस पर सभी देवताओं ने आभूषण आदि के रूप में तुम्हें शक्ति प्रदान की है, इसलिए तुम सदैव विजय रहोगे। सुर असुर दैत्य राक्षस मनुष्य नाग आदि में ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारी समता कर सके। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे देवाधिदेव, हे गजमुख, तुम सभी शास्त्रों समस्त विद्याओं समस्त कर्मों में स्वयं सिद्ध निशांत हो। अन्य तो क्या, मैं भी तुम्हारे पांडित्य का सामना करने में समर्थ नहीं हूँ। हमारी प्रार्थना है कि तुम सदैव देवताओं के पक्ष का निर्वाह करते रहना। इसके पश्चात समस्त उपस्थित देवताओं मुनियों गंधर्वों किन्नरों यक्षों अप्सराओं देवियों आदि ने भी विभिन्न प्रकार से अपने अपने मतानुसार गजमुख की स्तुति की। तदंतर शिव शिवा दोनों ने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न मणि आदि का दान दिया। वंदीजनों को सैकड़ों हजारों हाथी घोड़े प्रदान किए। तदुपरांत शिव शिवा ने मंगलोत्सव मनाते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा वेद पाठ एवं पुराण पाठ के भी आयोजन हुए। नृत्य गीत आदि भी चलने लगे। अप्सराएं और सुर वनिताएं विविध प्रकार के नाच द्वारा उत्सव को और भी अधिक शोभायमान बना रही थीं। इस प्रकार यह उत्सव दीर्घ काल तक निर्बाध रूप से चलता रहा। शनिदेव को माता पार्वती का शाप। बेचारे शनिदेव अभी उसी प्रकार नीचा मुख खड़े किए थे। वे संकोच के कारण ना तो जा सके और ना उत्सव में ही भाग ले सके। तभी माता पार्वती जी की शनि देव पर दृष्टि पड़ी तो उन्हें क्रोध आ गया। शनि देव को लज्जा से सुकड़े हुए देखकर माता पार्वती क्रोधित हुई और उन्होंने शनि देव को शाप दिया कि तू सभा के मध्य में ही अंगहीन हो जा। सूर्यदेव कश्यप तथा यमराज का माता पार्वती पर क्रोधित होना। माता पार्वती के द्वारा सूर्य पुत्र शनि को इस प्रकार शाप दिए जाने पर भगवान सूर्यदेव कुपित हो गए और लाल नेत्रों से देखते हुए बोले, सभी उपस्थित सज्जन देख ले कि गिरिजा ने मेरे पुत्र को व्यर्थ ही शाप दिया है। उस बिचारे का किंचित मात्र भी दोष नहीं था। वह दर्शनार्थ आया था और गिरिजा की अनुज्ञा प्राप्त करने पर ही उसने बालक की केवल झलक ही देखी थी। फिर अब जबकि बालक पुनर्जीवित हो गया और उसी उपलक्ष्य में उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो इस अवस्था में उसे शाप देने का प्रयोजन ही क्या था। कश्यप और यमराज भी क्रुद्ध हो गए और तीव्रता से कहने लगे, शनि का कोई अपराध नहीं था। जब जो कुछ भवितव्य होता है वह होकर ही रहता है। फिर शनैश्चर तो लज्जा से सिर झुकाए खड़े थे, इसलिए उन्हें अभिशप्त करने की अपेक्षा उन पर दया करनी चाहिए थी। सूर्य देव आदि का भगवान विष्णु से भी रुष्ट होना, इसी प्रकार कुछ अन्य देवता भी उठ खड़े हुए, क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो रहे थे, होष्ठ फड़क रहे थे और आवेग के कारण शरीर कांप रहा था। तभी वे पुनः बोले, इस शाप की प्रमुख अपराधिनी गिरिजा और दूसरे अपराधी विष्णु हैं। हम इन दोनों को ही आज ऐसा शाप देंगे कि यह जीवन भर अपने कर्म फल रूप का स्मरण रखें। यह कहते हुए वे जग जननी माता पार्वती जी और भगवान श्री हरि को शाप देने को उद्गत हुए देखकर ब्रह्मा जी उठे और उन्होंने उन सबको इस प्रकार समझाया, हे दिनकर, हे कश्यप, हे यमराज एवं अन्य नए देवगण, इस विवाद को शांत किया जाना ही श्रेयस्कर है। जो कुछ होने वाला था वह हो चुका, अब आगे किसी के भी द्वारा शापों का आदान प्रदान होने से हम सभी की हानि है, क्योंकि उससे दुष्कर्मी असुर आदि अधिक प्रबल हो जाएंगे, जिसके फल स्वरूप हम सभी को तिरस्कृत और भयभीत रहना पड़ेगा। अतएव विवेक से काम लेते हुए क्रोध का निवारण करो। श्री हरि और माता पार्वती का शाप देने को तैयार होना। उधर विष्णु जी और पार्वती जी भी उन्हें शाप देने को उद्गत हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनके प्रति भी ऐसा ही निवेदन किया, भगवान आप सभी के ईश्वर, ज्ञान और बुद्धि के प्रेरक, काल के भी नियंता एवं सर्वसमर्थ हैं। आपका क्रोध समस्त त्रिलोकी को भस्म करने में समर्थ है, तथा हे जगन निवास, यह समस्त विश्व आपने ही उत्पन्न किया है, तो अब आपके ही शाप से नष्ट नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है कि आप क्रोध को त्याग कर शांत होने की कृपा करें। फिर उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं, आपके निमेश उन्मेश में ही संसार का विनाश और प्राकट्य निहित है, इसलिए आपको शिवा कहते हैं। हे कल्याणी, आप अन्य किसी की बात पर ध्यान ना देकर मेरी बात मानिए, इस जगत को नष्ट होने से बचाइए परमेश्वरी, अन्यथा घोर विनाश उपस्थित हो सकता है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के कोमल एवं सार गर्भित वचन सुनकर महर्षि कश्यप बोले, पितामह, यह बेचारे शनैश्चर तो पत्नी के शाप से दृष्टि दोषी हो ही गए थे और वह तथ्य इन्होंने छिपाया भी नहीं। बालक की माता ने इनके दृष्टि दोष जानते हुए भी बालक को देखने की आज्ञा दी और तभी उन्होंने उसे देखा था। तब उसके छिन्न मस्तक होने में इन बेचारे का क्या दोष रहा? तभी सूर्य बोल पड़े, मेरे पुत्र ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक की माता से आज्ञा ली, तभी उनके पुत्र की ओर देखा, फिर उस निरअपराध को अंग भंग होने का शाप दे डाला, इसलिए अंग भंग को रोका जाने पर ही शांति संभव है। यमराज बोले, गिरिराज नंदनी ने स्वयं ही देखने की आज्ञा दी थी, तब मुझे साक्षी बनाकर शनि देव ने उस बालक को प्रयत्न पूर्वक स्वल्प ही देखा था, और जब बालक का अंग भंग होने के पश्चात वह पुनर्जीवित हो गया तो भी शनि देव को शापित कर डाला। इसलिए यदि हम लोग किसी बाधिक को शाप देना चाहते हैं तो उसमें दोष ही क्या है? ब्रह्मा जी बोले, आप लोग शांत हो जाएं, मैं शीघ्र ही वह यत्न करूंगा कि माता पार्वती के शाप का विमोचन हो जाए। माता पार्वती जी ने सहज चंचलता वश शाप दे डाला, वह उनकी भूल थी, किंतु सज्जनों द्वारा तो बड़े से बड़े अपराधी भी क्षमा कर दिए जाते हैं। इस प्रकार पितामह ने उन सबको शांत किया और फिर शनिदेव से बोले, ग्रहेश्वर, तुम तुरंत ही देवी पार्वती की शरण में चलो, तुम्हारे शाप का निवारण उन्हीं की कृपा से संभव है। यदि तुम्हारे पिता और उनके पक्ष वाले देवता माता पार्वती को शाप दे भी दें, तो उससे तुम्हारे कोई उपकार नहीं हो सकता, इसलिए आओ मेरे साथ। चतुरानंद का आदेश मानकर शनि देव उनके साथ माता के आश्रय में पहुँचे और तब ब्रह्मा जी ने माता पार्वती जी से निवेदन किया, जगजननी, हे दुर्गे, आपने अपने पुत्र के दर्शन की आज्ञा दे दी थी तो शनि देव का क्या दोष था, फिर भी आपने उन निर्दोष को शाप दे डाला, इसलिए अब उस शाप का प्रतिकार होना आवश्यक है। माता पार्वती द्वारा शनिश्चर को वर प्रदान करना। माता पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की बात पर कुछ देर विचार किया और बोली, पितामह, मेरा शाप अमोघ है, उसका व्यर्थ होना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज नंदनी, इसका कुछ उपाय तो करना ही होगा, अन्यथा सूर्य, कश्यप, धर्म आदि देवताओं के कोप से तीनों ही लोग भस्म हो जाएंगे। माता पार्वती बोली, चतुरानन, मैं शाप दे सकती हूँ तो वर भी दे सकती हूँ, इसे और इनके पक्ष के सभी देवताओं को मैं वरदान देने से संतुष्ट कर दूंगी। ब्रह्मन, आप उन सभी को यहाँ बुला लीजिए। सूर्य आदि सभी वहाँ बुला लिए गए। उन्होंने आकर जगजननी के चरणों में प्रणाम किया और जय जयकार करते हुए बोले, परमेश्वरी, कृपा करो, इस निर्दोष शनिश्चर को अपने अनुग्रहात्मक दृष्टि से निहारिए। इस प्रकार से सूर्य, कश्यप आदि द्वारा किए गए स्तवन से शिवा संतुष्ट हो गई और शनि देव के प्रति कहने लगी, ग्रह राजो भव शने मद वरेण हरि प्रियः, चिरजीवी च योग निद्रो हरि भक्तस्य का विपत्। हे शने, तुम भगवान श्री हरि के प्रिय हो, मेरे वरदान से ग्रहों के राजा होगे, योगियों में परम योगी रूप योगेंद्र और चिरंजीवी बनोगे। अरे, हरि भक्त का विपत्ति क्या कर सकती है, मेरा यह भी वर है कि भगवान श्री हरि के तुम परम भक्त हो, तुम्हारे हृदय में उनकी दृढ़ भक्ति रहेगी, परंतु वत्स, मेरा शाप अमोघ होने के कारण नष्ट तो नहीं हो सकता, किंतु उसका किंचित प्रभाव पांव पर ही पड़कर रह जाएगा, तुम कुछ लंगड़े हो जाओगे। माता पार्वती जी के वचन सुनकर शनिदेव को संतोष हुआ, साथ ही सूर्य देव, कश्यप देव, धर्मदेव आदि भी संतुष्ट हो गए और गिरिराज नंदनी की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप महान हैं, हम तुच्छ प्राणी आपकी महिमा को कैसे जान सकते हैं, आप संसार की स्वामिनी हैं, आपके दृष्टि मात्र में ही संसार का उत्थान और पतन निहित है, यदि आप क्रोध पूर्वक हैं तो विनाश और प्रसन्न होकर देखती हैं तो विकास एवं सुख ही सुख है। हे जगजननी, हम पर ऐसी कृपा अवश्य करें कि हम आपके चरणों को सदैव याद रखें और आप मातेश्वरी का अनुग्रह निरंतर प्राप्त करते रहें, हम पर कभी कोई विपत्ति ना आवे और हम किसी प्रकार के दुख में ना पड़े, आपकी ऐसी कृपा में ही हमारा कल्याण निहित है। माँ भगवती उमा उक्त स्तुति को सुनकर प्रसन्न होती हुई कहने लगी, देवगण, मैं आपके स्तवन से अत्यंत संतुष्ट हुई, आपने जो कुछ भी अभिलाषा की है वह सब पूर्ण होगी, आप पर प्रथम तो कोई संकट आवेगा ही नहीं और कभी आया भी तो मैं अपने दुर्गा रूप में आपके स्मरण मात्र से पहुंचकर रक्षा करूंगी। अब आप सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को पधारें, निश्चय ही मेरा अनुग्रह आप सबके साथ है। अब पार्वती जी ने बालक को गोद में उठाया और उसे पुचकारती हुई प्रसन्न मन से अपने भव्य सिंहासन पर विश्राम करने लगी और तब शनिर्जगाम देवानाम समीपम हृष्ट मानसः प्रणम्य भक्तयाताम ब्रह्मनम्बिकाम जगदम्बिकाम। प्रसन्न मन हुए शनि देव माता जगदम्बा को प्रणाम करके अपने पिता सूर्य आदि देवताओं के पास चले गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।
2: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित भान्साघर जीरा मसिनो चामल, भान्साघर लॉन्ग ग्रेन, भान्साघर बासमती चामल, भान्साघर उसिना चामल, स्वाद र सन्तुष्टिको लागि।
1: जीवन सरल एसआर ल्याक्स नजिकको फार्मेसी वा आयुर्वेदिक स्टोरमा उपलब्ध छ।
2: सम्पर्क 9800830007।
3: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
4: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
3: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
5: जेजे ज्वेलर्स
6: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
7: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
8: सम्पर्क नम्बर 5320411 9800276888।
6: जेजे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।
9: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।